0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling.

0: है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले। छम छम छम छम छम छम छम। ए गर्ल, हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज